क्या आप जानते हैं कि जिस ट्रेड मिल को आप हर रोज जिम में इस्तेमाल करते हैं उसकी तारीख क्या है? 1800 की दिहाई में कैदी रोजाना 6 घंटे इन मशीनों पर गुजारते थे। वो माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई जितना सफर रोजाना पैदल तय करते। एक तशद्दुद के आले से लेकर फिटनेस मशीन बनने तक ट्रेडमिल की स्याह तारीख अब शुरू होती है। ट्रेडमिल खास तौर पर खेल और फिटनेस के लिए आजमी मशीन है। आजकल जो मशीन जिमों की जीनत बनी हुई है, माजी में वो कैदियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल होती थी। आज हम जानान बिलगिजी और नाज इरम उस्तुंदा के इस मौजू पर बात करेंगे जो उन्होंने TRT न्यूज के लिए लिखा है। तो आइए सुनते हैं ट्रेडमिल की ये दिलचस्प कहानी। ट्रेडमिल्स को 1800 की दिहाई में बरतानवी कैदियों को सजा देने के लिए बनाया गया था। उस दौर में बरतानवी जेलों का निजाम इंतहाई अबतर हालत में था। फांसी और जिलावतनी पसंदीदा सजाएं थीं। कैदियों को इंतहाई गंदे खुलियों यानी काल कोठरियों में बंद करके दुनिया से अलग थलग रखा जाता था। इस सूरत हाल को बदलने के लिए कुछ रजाकारों ने मदद करने की कोशिश की। इसके नतीजे में ट्रेडमिल जैसी कैदियों की इसलाह के नए तरीके सामने आए। ट्रेडमिल को हमारे जिंदगियों में 1818 में एक बरतानवी इंजीनियर सर विलियम क्यूबिट ने मुतारिफ करवाया। ताहम ट्रेडमिल बनाने का मकसद सेहतमंद जिंदगी गुजारना या चर्बी पिघलाना नहीं था। ट्रेडमिल को एक तशद्दुद के आले के तौर पर डिजाइन किया गया था। जब क्यूबिट ने सेंट एडमंड्स जेल में कैदियों को बेकार और सुस्त बैठे देखा तो उनके जहन में एक दिलचस्प ख्याल आया। उन कैदियों की जिस्मानी ताकत को इस्तेमाल में लाया जा सकता था और उनसे ज्यादा सख्त सजा का काम लिया जा सकता था। चुनांचे क्यूबिट ने पहली ट्रेडमिल डिजाइन की। पहली ट्रेडमिल दरअसल एक बहुत बड़े गोल घूमने वाले पेज की तरह थी जिस पर एक दर्जन के करीब कैदी एक साथ दौड़कर उसे घुमाते थे। ये सीधा दौड़ने के बजाय मुसलसल सीढ़ियां चढ़ने जैसा था। कैदियों के लिए मुसलसल हरकत करना जरूरी था क्योंकि अगर वो रुकते तो नीचे गिर जाते। उनकी इस हरकत से गंदम पीसने, पानी खींचने या कानों में ताजा हवा पहुंचाने के लिए जरूरी तवानाई पैदा होती थी। कैदियों के अलावा हर कोई इससे फायदा उठा रहा था। सरासर अजाब। इस इजाद के बाद अगले 10 सालों में 50 बरतानवी और इतनी ही तादाद में अमरीकी जेलों ने ट्रेडमिल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उस दौर के बहुत से लोगों ने ट्रेडमिल को जेल के बेकार माहौल को एक बेहतरीन हल समझा। 1875 में एक मकामी इलाके ने ट्रेडमिल को जेल के नज्म व ज़ब्त में एक बड़ी तरक्की करार दिया, जबकि जेल डिसिप्लिन इम्प्रूवमेंट सोसाइटी ने इसे एक अबरतनाक सजा का नाम

ये समझा जाता था कि जो कोई भी एक बार मिल की सजा भुगत लेगा वो दोबारा कभी कोई जुर्म नहीं करेगा। वो रोजाना माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई जितना चढ़ते थे। अंदाजों के मुताबिक कैदी रोजाना 6 घंटे इन ट्रेडमिल्स पर गुजारते थे। ये औसतन 1500 से 4200 मीटर की ऊंचाई चढ़ने के बराबर है। 4267 मीटर की बुलंदी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट का आधा रास्ता है। क्यूबिटा ये डिजाइन बरतानवी सल्तनत की सरहदों को पार करके अमरीका में भी तेजी से फैल गया। इस शदीद मशक्क़त के मिलाप ने ज्यादातर कैदियों को माजूर और जख्मी करना शुरू कर दिया। ट्रेडमिल 19वीं सदी की जेलों के बुरे हालात की अलामत बनकर रह गई। इसके नतीजे में 1898 में ट्रेडमिल के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। में अमेरिका में पेटेंट होने वाले ट्रेडमिल का तिब्बी इस्तेमाल बहुत बाद में यानी 1952 में डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस ने अपने एक साथी पर तजुर्बात करने के बाद शुरू किया। डॉक्टर ब्रूस के इन तजुर्बात ने इस टेस्ट की बुनियाद रखी जिसे आज ब्रूस कहा जाता है, जिससे ये मालूम किया जाता है कि दिल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। 1960 और 1970 की दिहाइयों में कार्डियो वर्जिश के मकबूल होने के साथ ही ट्रेडमिल्स पहले जिमों में और फिर हमारे घरों में दाखिल हुई। इस तरह हैरत अंगेज और तंज आमेज तौर पर एक जमाने का तशद्दुद का आला आज सेहतमंद जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो क्या आप जानते थे कि आज जिम में इस्तेमाल होने वाले ट्रेडमिल के पीछे इतनी तारीख छुपी हुई है? हमारे अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।

0: हमले के 10 अरकान लापता हो गए हैं। बुध की सुबह इस्तांबुल की तहसील सिलेवरी के साहिल पर तुर्की के परचम बरदार दो बहरी जहाज आपस में टकरा गए। मैरीटाइम हुकाम ने ख्याल जाहिर किया है कि जहाज और इसके 10 अफराद पर मुश्तमिल अमले से राबता मुनकते होने के बाद जहाज में से एक डूब गया है। हादसा सिलेवरी से 18 नाटिकल मील जनूब में पेश आया। सिविल फोर्सेज के जेर कमान तलाश और बचाव का काम जारी है।
1: पाकिस्तानी फौज का कहना है कि अफगानिस्तान की सरहद के नज़दीक खैबर पख्तूनख्वा सूबे में 15 अस्करियत पसंद बे असर कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी मुसलह अफवाज के मीडिया और उमूर ताल्लुकात आमा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली वजीरिस्तान इलाके में एक अस्करी कार्रवाई की। बयान में कहा गया है कि 36 घंटे तक जारी रहने वाली कार्रवाई के नतीजे में भारतीय हिमायत याफ्ता 15 अस्करियत पसंद बे असर किए गए और हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया। पाकिस्तान में मुसलह हमले खसूसा अफगानिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सूबे में मरकूज है। दोनों सूबों में पश्तून और बलोच नस्ली ग्रोहों के हकूक का दिफा करने का दावा करने वाली मुसलह तंजीमें सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमले करती रहती हैं। इस्लामाबाद का मौक़िफ़ है कि कालादम पाकिस्तान तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में ठिकाने बनाए हुए है और वहीं से हमले मुनज़्ज़म करती है, जबकि अफगान इंतजामिया इन इल्ज़ाम की तरदीद करती है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले नुमाया हैं। BLA बलूचिस्तान के पाकिस्तान से अलहदगी और बलोचों के इस इलाके पर खुद हुकूमत करने का मुतालबा करती है।
0: ईरान ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के इस दावे पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है, जिसमें कहा गया है कि अमरीकी फौज शहरियों को कभी निशाना नहीं बनाती। ईरान वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सूबा हरमजगान के शहर सिरक में एक शादी की तकरीब पर अमरीकी हमले के बाद यह बयान जारी किए हैं। इस हमले में एक 4 साल बच्चे समेत 4 अफराद जान बहक और 68 जख्मी हो गए थे। बकाई ने माजी में अफगानिस्तान और इराक में शादी की तकारीब पर अमरीका के खूनी हमलों की याद दहानी करवाते हुए सेंटकॉम के तर्जुमान टिम हॉकिंस के दावों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हकीकत इतनी होलनाक है कि अमरीकी प्रोपोगंडा अभी हॉकिंस के इस दावे की जुर्रत नहीं कर सका। सिर्फ एक कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तेहरान इंतजामिया ने इस हमले को जंगी जुर्म करार दिया था। अमरीकी फौज ने 28 फरवरी को सुबह हरमजगान के शहर मीनाब में एक प्राइमरी स्कूल पर भी हमला किया था, जिसमें 168 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे।
1: वॉल स्ट्रीट जर्नल की बुध के रोज शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप निजी तौर पर ईरान के साथ जंग के खात्मे का ऐलान करने पर गौर कर रहे हैं, जबकि पेंटागन मशरिक़ वस्ती में अफवाज की तैनाती को खामोशी से तूल दे रहा है। अखबार ने लिखा है कि ट्रंप ने अपने आला मावनीन के साथ इस बात पर तबादला ख्याल किया है कि क्या ईरान जंग ख़त्म की जाए। मुबैना तौर पर यह सदर की ज़ाती तरजीह है। ट्रंप का मानना है कि शदीद इक्तसादी दबाव को बरकरार रखने से बिलआखिर तहरान मजबूर हो जाएगा कि वो या तो अपना जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करें या फिर तबाही की तरफ चला जाए। अमरीका ने गुज़िश्ता हफ्ते ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया है, जिसमें ईरान की मईशत के अहम ज़राए बशमूल पेट्रोलियम, बहरी जहाज़रानी, हवाबाजी, सोना, टेक्नोलॉजी और डिजिटल असासों के शोबों को निशाना बनाया गया है। दूसरी जानब पेंटागन तैनातियों की मदद में तौसी कर रहा है, जो इस बात की अलामत है कि यह जंग अगले साल के अवाखिर तक जारी रह सकती है। सदर को ऑपरेशनल लचक फराहम करने के मकसद से अस्करी कुवत के तौर पर 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों और 13 गाइडेड मिजाइल शिकन बहरी जहाज़ों समेत 50,000 फौजी और 19 जंगी जहाज़ों की तैनाती को बरकरार रखा जा रहा है।
0: मकबूजा मगरबे किनारे के इलाके अलमगैर में इसराइली फौज और गैर कानूनी आबादकारों ने फायरिंग करके 2 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। फलस्तीन खबर रसाई एजेंसी वाफा के मुताबिक इसराइली फौज और गैर कानूनी आबादकारों ने मकबूजा मगरबी किनारे में रामल्ला के शुमाली गांव अलमगैर पर छापा मारा और इस दौरान असली गोलियों का इस्तेमाल करके 2 फलस्तीनी नौजवानों को कत्ल कर दिया है। फलस्तीन हलाले अहमर की हंगामी सर्विस ने तस्दीक की है कि इसराइली फौजियों और गैर कानूनी आबादकारों ने मुश्तरक हमले के दौरान 2 19 साल नौजवानों में से एक को गर्दन में और दूसरे को पुश्त में गोली मारी। दोनों नौजवान शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाते हुए शहीद हो गए हैं।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: चीन के सदर शी जिनपिंग ने मशरिक वस्ता के ममालिक की एक नया सिक्योरिटी ढांचा तश्कील देने की हिमायत करते हुए कहा है कि मसला फलस्तीन को पसे पुश्त नहीं डाला जाना चाहिए। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी जिनहुआ की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने यह बयान काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी के साथ मुलाकात के दौरान दिए।

0: शी जिनपिंग ने खत्ते में बैरूनी मदाखलत की मुखालफत करते हुए कहा कि चीन मशरक वस्ती के लिए एक नया सिक्योरिटी ढांचा कायम करने के सिलसिले में खत्े के ममालिक की हिमायत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि मशरक वस्ती के आवाम को अपने मामला खुद संभालने चाहिए और बैरूनी मदाखलत को मुस्तरद किया जाना चाहिए। चीनी सदर ने चीन और मिस्र पर जोर दिया कि वह एक तरफा पसंदी और तसल्लुत पसंदी के खिलाफ मुश्तरक मौक़िफ अपनाएं। चीनी रहनुमा ने खत्ते में मुश्तरक सिक्योरिटी के लिए एक जामे हल की अपील करते हुए वाज़े किया कि मसला फ़लस्तीन मशरक वस्ती के मसले का बुनियादी मरकज़ है और उसे कभी भी नज़रअंदाज या हाशिए पर नहीं डाला जाना चाहिए। मजीद बरआ शी जिनपिंग ने खत्ते में कौम तहदा के मौसर किरदार की हिमायत का इरादा किया और बैरूनी ताकतों से मुतालबा किया कि वह मशरक वस्ती में दोहरे मयार को तर्क कर दें। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बायस आबनाए हुरमुज़ में पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करते हुए चीनी सदर ने कहा कि चीन बैनुल अक़वामी समंदरी तजारती रास्तों को सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए मशरक़ वस्ती के ममालिक के साथ तआवुन के लिए तैयार है।
1: रूस के फजाई दिफाई अफवाज ने रात भर मास्को की तरफ परवाज करने वाले 37 ड्रोन तैयारों को नाकारा कर दिया है। मेयर सरगी सुबानियन ने आधी रात के बाद जारी करदा एक बयान में कहा है कि वजारत दिफा की अफवाज ने ड्रोनों को कामयाबी से मार गिराया। इन ड्रोनों को यके बाद दी गिरे 10, 17 और 10 के ग्रुपों की शक्ल में गिराया गया है। सुबानियन ने बताया है कि हंगामी खिदमात के अमले को इन मुकामात पर रवाना कर दिया गया है जहां मलबा गिरा था। हुकाम की जानब से हमले के नतायज के बारे में तफसीलात फराहम न किए जाने के बायस ये अभी भी वाज़ह नहीं है कि आया ड्रोन के मलबे से कोई जानी नुकसान हुआ है या किसी तनसीब को नुकसान पहुंचा है या नहीं। ड्रोनों के इस हमले के हवाले से यूक्रेन की तरफ से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। रूस यूक्रेन जंग में हालिया अरसे के दौरान तवील अरसे तक मार करने वाले ड्रोनों और मिज़ाइल हमलों में तेज़ी आ गई है।
0: मादुरो ने अपनी इस्तिस्नाई अहसियत के हवाले से अमरीकी जज से अपने खिलाफ इल्जाम खारिज करने की दरख्वास्त की है। वेनेजुएला के ज़ेर हिरासत सदर निकोलस मादुरो ने अमरीकी जज से कहा है कि वह उनके खिलाफ मंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम को ख़त्म कर दें। उन्होंने दलील दी है कि खुद मुख्तार मुल्क के रहनुमा की हैसियत से उन्हें कानूनी चाराजोई से इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। वाज़ रहे कि मैनहट्टन की वफाकी अदालत में दायर मुकदमे ने अमरीकी फ़ौज के 3 जनवरी के कराकास पर छापे और मौके गिरफ्तारी पर मबनी ऑपरेशन की बुनियाद तश्कील दी है। मादुरो की इस मुकदमे को खारिज करवाने की कोशिश नाकाम हो जाती है तो मुकदमे की समाअत 1 जून 2027 को शुरू हो जाएगी।
1: अमरीका के शहर न्यूयॉर्क सिटी में 8वीं जमात के तलबा के लिए मसनू जहानत का इस्तेमाल ममनू कर दिया गया है। न्यूयॉर्क सिटी ने बुध के रोज जारी करदा बयान में 2026-2027 के तालीमी साल के लिए 8वीं जमात तक के तलबा के लिए मसनू जहानत के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। मेयर दफ्तर के मुताबिक यह पॉलिसी अमरीका में तलबा पर मरकूज मसनू जहानत के इस्तेमाल पर आयद की जाने वाली सबसे वसी पैमाने की पाबंदी है। पाबंदी का इतलाक नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक के तकरीबन 6 लाख तलबा पर होगा। पाबंदी 2 साल से 13 या 14 साल की उम्र के बच्चों का इहाता करती है। मेयर जोहरान ममदानी ने कहा है कि बच्चों को सीखने और नशोनुमा पाने के लिए उसातज़ा और इंसानी ताल्लुकात की ज़रूरत होती है। इन्हें अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी सलाहियतें परवान चढ़ाने, उसातज़ा के साथ ताल्लुक कायम करने और मुश्किल मसाइल का खुद सामना करने की ज़रूरत है। ये पाबंदी तलबा के लिए मवाद तैयार करने वाली तमाम मसनू जहानत सॉफ्टवेयरों पर लागू होगी। उसातज़ा तदरीसी मनसूबाबंदी और इंतजामी अमूर के लिए न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूलों के हिफाजती मियारों पर पूरी उतरने वाली मसनू जहानत एप्लीकेशनों का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे।
0: जमहूरी कांगो में अबोला की वबा में 3,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। हुकूमत के बुध के रोज जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में अबोला की वबा 6,100 से ज्यादा तस्दीक शुदा केसों में से 3,000 से ज्यादा अफराद की जान ले चुकी है। जमहूरी कांगो वजारत सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक 15 मई को वबा के ऐलान के बाद से अब तक 6,186 केसों की तस्दीक हुई और 3,007 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।
1: और लीजिए सामिन अब एक गीत समाप्त फरमाइए। गीत के बोल हैं शुमारक और गाया है दरिया उलूह ने।

सकी क्योंकि उसने नल का गंदा पानी इस्तेमाल किया था। इन्हीं सालों में बरतानवी कीमियादान जोजफ प्रेसले, जो कीमिया के शोबे में काम कर रहे थे और इस मकाले को साबित करने की कोशिश में थे कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह मुख्तलिफ गैसों का मुरक्कब है, अपने साइंसी तजुर्बात के लिए अपने घर के करीब एक शराब खाने में वो ठहरे। एलन प्रेसले अक्सर शराब खानों में जाते थे। उन्होंने बियर के उबाल के अमल के दौरान खारिज होने वाली गैसों को इकट्ठा करके तजुर्बा किया। इत्तफाक से दरियाफ्त किया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में तहलील हो सकती है। प्रेसले, जिसने यॉर्कशायर शहर के चर्च में एक पादरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी और अपने अकायद की वजह से अल्कोहल वाले मशरूबात से वो दूर रहते थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक खुशगवार, जायकेदार और जरासीम से पाक मशरूब बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहा। बीमार होने पर प्रेसले ने पहले नल के पानी को उबालकर जरासीम से पाक किया, बोतल में भरे हुए पानी में कुछ मादनियात शामिल किए और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इंजेक्शन लगाया। नतीजा एक चमकता हुआ मशरूब था जिसे आज हम सोडा या मस्नूई मिनरल वाटर कहते हैं। प्रेसले की यह दरियाफ्त ने सबसे पहले इसी शहर के मजहबी लोगों में बहुत तवज्जो मबजूल करवाई जहाँ वह रहता था और वक्त के साथ साथ ये पूरे मुल्क में फैल गई। एक शौकिया जर्मन कीमियादान जैकब श्वेब था जिसने मसनूई मिनरल वाटर बनाया जो ज़्यादा खाने के बाद हमारा पहला जरिया था। यह दरियाफ्त यूरोप में फैल गई। श्वेब का बुनियादी मकसद एक ऐसी माया दवा तलाश करना था जिससे मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। श्वेब ने सबसे पहले प्रेसले के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए मसनूई मिनरल वाटर बनाया और फिर चीनी और क्विनिन मिलाकर टॉनिक हासिल करने में कामयाब हो गए। जर्मन कीमियादान श्वेब की कुनियत से कायम होने वाली कंपनी कई सालों से मस्नूई मिनरल वाटर और टॉनिक दोनों की तैयारी में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।